0: गुरु की पावन गोद अंदर विराजमान गुरु सवारी साध संघ जी आप जी नूं कीर्तन सरवण करवा रहे सन। भाई बिक्रमजीत सिंह जी गुरदासपुर वाले भाई साहब होरां दा बहुत बहुत धन्नवाद। सतगुरु पातशाह इस तरह कृपा करके अपने दर की सेवा लेंदे रहन। सो समा होया है इतिहास की कथा का। असीं जी आए नूं आखदे हाँ बहुत ही सत्कारयोग पंथ प्रसिद्ध विद्वान ज्ञानी हरविंदर सिंह जी गंगानगर वाले वो साढ़े विचकार पहुँचे ने। अज उन्हां दा स्टेज ते पहला दीवान है। भाई साहब होरी आप जी नूं कथा सरवण करवाउणगे। आओ इस तरह जुड़ के लाहे प्राप्त करिए। आप जी जानदे हो कि पिछले महीने ज्ञानी प्रितपाल सिंह जी पटियाले वाले आप जी नूं एक महीना गुरबाणी की लड़ीवार कथा और गुर इतिहास की कथा द्वारा गुरु चरणा नाल जोड़न की सेवा निभाते रहे ने। सो इस महीने साढ़े कोल दो पंथ प्रसिद्ध विद्वान ज्ञानी प्रगट सिंह जी मोगे वाले अते ज्ञानी हरविंदर सिंह जी गंगानगर वाले पहुँचे हुए ने। सो आओ हुण ज्ञानी हरविंदर सिंह जी आप जी नूं गुर इतिहास की चल रही लड़ीवार कथा बहुत ही प्रसिद्ध इतिहासक ग्रंथ श्री गुरु पंथ प्रकाश विचों सरवण करवाउणगे। आओ उन्हां पासों कथा सरवण करिए जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
1: सतनाम वाहिगुरु साहिब जी। श्री नानक पद पंकज बंदन

0: दुनिया दे मोह विचो समा कढ के पा लिए मोह सच्चे सतगुरु ना
1: मुड़ के बेकारां वल्लों पहरे अपने कर दिए सुरू गुरु पल तुरना
0: दुनिया दे मोह विचो समा कढ के पा लिए मोह सच्चे सतगुरु ना
1: मुड़ के बेकारां वल्लों पहरे अपने कर दिए शुरू गुरु बल तुरना
0: मन मन शांत हुंदा बाणी पढ़ के
1: हटदा जवाना पटने तो कूरियां
0: मन मन शांत हुंदा।

पढ़े सुने क्या होई, जो सहज ना मिलियो सोई। हर का नाम न जब से गवारा, क्या सोच है बारंग बारा। रहा अंधियारे दीपक चाहिए, एक वस्त्र गोचरा लहिया। वस्त्र अगोचर पाई, काट दीप का रया समाई। कह कबीर अब जानिया,

हे गरीब नवाज दातार पातशाह जी, आप जी के हजूर अरदास है जी। दीवान दी संपूर्णता उपरंत आप जी ने पावन श्री मुख वाक दी बख्शिश कीती। आप जी दे पावन स्वरूप दी टहल सेवा होई। सोहिला साहब जी दी बाणी दा जाप कीता गया। बाणी पढ़दिआं सेवा करदिआं आप जी दी हजूरी विच विचरदिआं होईआं बेअंत प्रकार दीआं भुल्लां लई खिमा जाचना है। अगे तो सुमत बख्शिश करनी। सेवादार संगत आप जी दे चरणा विच हाजर है। आप जी अपने सुंदर आसन उपर विराजमान हो के आराम फरमाओ। सेवकां नूं खुशियां बख्शो। सही प्यारे मेल जिन्हां मिलिआ तेरा नाम चित आवे। नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बोले सो निहाल जिथे जाए बह मेरा सतगुरु सो थान सुहावा राम।

सगल पवन की सुध। मन मोह चोटा ना खाई, मन जम के साथ ना जाई, ऐसा नाम निरंजन होई। जी को मन जाने मन कोई, मन मार्ग ठाक ना पाई, मन पथ से प्रगट जाई, मन मग न चले पंथ, मन धर्म से ती संबंध।

पंच प्रवान पंच प्रधान पंच पावे दर गहमान पंच सोह है दर राजान पंचा का गुर एक त्यान जे को कह करे विचार करते कह करण नाही सुमार तौल धर्म दया का पूत संतोख थाप रखिया जन सूत।

जित वह सर्व संभाले वाजे नाद अनेक संखा कीते वावन हारी कीते राग परी सो कहियन कीते गावन हारे गावे तुहण पौन पानी बह संतर गावे राजा धर्म द्वारी गावे चित गुप्त लिख जान है लिख लिख धर्म बीच।

आदिस तसे आदिस आदि अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वीस एक दूजी भाव लख हो हे लख हो वह लख वीस लख लख गेड़ा आखी है एक नाम जगदीस ए

जोर ना मंगण देण ना जोर, जोर ना जीवन मरण न जोर, जोर ना राज माल मन सोर, जोर ना सुरती ज्ञान विचार, जोर ना जुगती छुट्टै संसार, जिस हथ जोर कर वेख्या सोई, नानक उत्तम नीच ना कोई, राती रुती थिति वार, पवन पानी अग्नि पाताल, तिस विच धरती था।

है, अनंत है, महंत है, अलीक है, नृसरीक है, निर्लंब है, असंभ है, अगम है, अजम है, अभूत है, अशूत है, अलोक है, अशोक है, अकर्म है, अपर्म है, अजीत है, अपीत है, अबाह है, अगाह है, अमान है, निधान है, अनेक है, फिर एक है, पुजंग, प्रयात, छंद। नमो सर्वमान्ये समस्ति निधाने, नमो देव देवे अपेक्षी अपेवे, नमो काल काले, नमो सर्व पाले, नमो सर्व गौणे, नमो सर्व पौणे, अनंगी अनाथे नृसंगी परमाथे, नमो पान पाने, नमो मान।

एक मूर्त अनेक दर्शन कीन रूप अनेक खेल खेल अखेल खेलन अंत को फिर एक देव भिवना जानही जे वेद और कतीब रूप रंग ना जात पात सो जानई केह जेब तात मात ना जात जाकर जन्म मरण विहीन चक्कर बकर फिर

वर्ण के सर्वा भरने के जगतं कृति है कि शत्रं क्षत्रि है कि ब्रह्मं स्वरूप है कि अनुपव अनुप है कि आदि देव है कि आप अपीव है कि चित्रंग विहीन है कि एक अधीन है कि रोजी रजा के रही मैं रिहा के कि पाक बैब है कि गैबुल गैब है कि अफबुल गुनाह है कि साहान साह है कि कारण कुनंद है कि रोजी देहांत है कि राज करहीम है कि कर्मं करीम है कि सर्वं कली है कि सर्वं दली है कि सर्वत्र मान्य है कि सर्वत्र दान्य है कि सर्वत्र गौण्य है कि सर्वत्र पौण्य है कि सर्वत्र देश है कि सर्वत्र भिष है कि सर्वत्र राज्य है कि सर्वत्र साज्य है कि सर्वत्र दीन है कि सर्वत्र लीन है कि सर्वत्र जाहु कि सर्वत्र पाहु कि सर्वत्र दिश है कि सर्वत्र भिष है कि सर्वत्र काल है कि सर्वत्र पाल है कि सर्वत्र हंता कि सर्वत्र गंता कि सर्वत्र भिखी कि सर्वत्र भिखी कि सर्वत्र काज है कि सर्वत्र राज्य है कि सर्वत्र सुख है कि सर्वत्र भूख है कि सर्वत्र त्राण है कि सर्वत्र प्राण है कि सर्वत्र दिश है कि सर्वत्र भिष है कि सर्वत्र मान है सदैव प्रधान है कि सर्वत्र जाप्य है कि सर्वत्र थाप्य है कि सर्वत्र पान है कि सर्वत्र मान है कि सर्वत्र इंद्र है कि सर्वत्र चंद्र है कि सर्वं कलीम है कि परमं फहीम है कि आकल अलम है कि साहिब कलम है कि हुस्नुल वजू है तमामुल रुजू है हमें सुलसलाम है सली खत्म दम है गनीमुल शिकस्त है गरीबुल परस्त है बिलुंदुल मकान है जमीनुल जमान है तमीजुल तमाम है रुजूल निदान है हरीफुल अजीम है रजाइक यकीन है अनेकुल तरंग है अपीद है अपंग है अजीजुल निवाज है गनीमुल खिराज है निरुक्त स्वरूप है त्रिमुक्त विभूत है प्रपुगत प्रवाह है सुजुगत सुदा है सदैव स्वरूप है अपीदी अनूप है समस्त उपराज है सदा सर्वसाज है समस्त सलाम है सदैव अकाम है निर्बाध स्वरूप है अगाध है अनूप है उवंगाद रूप है अनाद स्वरूप है अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकामे त्रिवर्गंग त्रिबाधे अगंजे अगाधे सुबंग सर्व भाग्ये सुसर्वानुरागे त्रिपुगत स्वरूप है अछिज है अशूत है कि नरकंग प्रणास है पृथ्वील प्रवास है निरुक्त प्रवाह है सदैव सदा है विपुगत स्वरूप है प्रजुगत अनूप है निरुक्त सदा है विपुगत प्रवाह है अनुगत स्वरूप है प्रजुगत अनूप है चाचरी छंद अपंग है अनंग है अपेख है अलेख है अपरम है अकर्म है अनाद है जुगाद है अजय है अभय है अपूत है अतूत है अनास है उदास है अतंध है अबंध है अभक्त है विरक्त है अनास है प्रकाश है अनचिंत है सुनिंत है अलिख है अधिक है अलेख है अपेख है अटाह है अगाह है असंभ है अगम्भ है अनिल है अनाद है अनित है सुनित है अजात है अजाद है चरपट छंद त्व प्रसाद सर्वं हंता सर्वं गंता सर्वं ख्याता सर्वं ज्ञाता सर्वं हर्ता सर्वं कर्ता सर्वं प्राणं सर्वं त्राणं सर्वं कर्मं सर्वं धर्मं सर्वं जुगता सर्वं मुक्ता रसावल छंद त्व प्रसाद नमो नरक नासे सुदैवं प्रकाशे अनंगंग स्वरूपे अपंगंग विभूति परमाथंग परमाथे सदा सर्वसाथे अगाध स्वरूपे निर्बाध विभूति अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकामे निरपंगी स्वरूपे सर्वंगी अनुपे न पुत्र न पुत्र न सत्र न मित्र न तात न मात न जात न पात नृसाकं सरीक है अमितो अमीक है सुदैवंग प्रभा है अजय है अजा है भगवती छंद त्व प्रसाद कि जाहर जहूर है कि हाजर हजूर है हमेशुल सलाम है समस्तुल कलाम है कि साहिब दिमाग है कि हुसनल चिराग है कि कामल करीम है कि राज करहीम है कि रुजी निहंद है कि राज करहिंद है करीमल कमाल है कि हुसनल जमाल है गनीमल खिराज है गरीबुल निवाज है हरीफुल सिकन है हिरासुल फिकन है कलंकंग प्रणास है समस्तुल निवास है अगंजुल गनीम है रजाय करहीम है समस्तुल जुबा है कि साहिब खिरा है कि नरकंग प्रणास है बहस्तुल निवास है कि सर्वल गवन है हमीसुल रवन है तमामुल तमीज है समस्तुल अजीज है परंग परम ईस है समस्तुल अदीस है अदीसुल अलीख है हमीसुल अपीख है जमीनुल जमा है अमी कुल मा है करीमुल कमाल है कि जुरत जमाल है कि अचलंग प्रकाश है कि अमितो सुबास है कि अजब स्वरूप है कि अमितो विभूत है कि अमितो पसा है कि आत्म प्रभा है कि अचलंग अनंग है कि अमितो अपंग है मद पार छंद त्व प्रसाद
ਮਨ ਮਨ ਪ੍ਰਣਾਮ।

राजराजे नमो इंद्र इंद्रे नमो अंधकारे नमो तेज तेजे नमो बृंद बृंदे नमो बीज बीजे नमो राज संगताम संगसांत रूपे नमो परम तत्तंग तत्तंग स्वरूपे नमो जोग जोगे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो मंत्र मंत्रे नमो ध्यान ध्याने नमो युद्ध युद्धे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो पूज पूजे नमो पान पाने नमो कलह कर्ता नमो शांत रूपे नमो इंद्र इंद्रे अनादंग विपूते कलंकार रूपे अलंकार अलंके नमो आश्वासे नमो बांक बंके अपंगी स्वरूपे अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रकाले अनंगी अकामे एक अछरी शांत अजय अलय अपह अभय अपू अजू अनास अकाश।

नारंगे नारूपे नारे के अकर्मंग अपरमंग अगंजे अलेखे पुजंग प्रयात छंद नमस्तल प्रणामे समस्तल प्रणासे अगंजुला नामे समस्तल निवासी नरकामंग विभूते समस्तल स्वरूपे सुकर्मंग प्रणासी सुधर्मंग विभूते सदा सचदानंद सतरंग प्रणासी करी मुलुक निंदा समस्तल निवासी अजा

कृपा करी हम पर जग माता ग्रंथ करा पूरन सुबराता किलबिख सकल देह को हरता दुष्ट दोखियन को शय करता श्री अस तुझ जब भय दयाला पूरन करा ग्रंथ तत्काला मन वाशत फल पावे सोई दुख न तिसे व्यापत कोई अडिल सुने गुंग जो याहि सुरस न पावई सुने मूड चित लाई चतुरता आवई दुख दर्द पौ निकट न तन नर के रह हो जो या की एक बार चौपई को कह चौपई संबत सत्रह सहस पणिजय अर्ध सहस फंतीन कहिजय भाद्रव सदी अष्टमी रविवार तीर सुद्रव ग्रंथ सुधारा सवैया पाए गहे जब ते तुमरे तब ते को आंख तरे नहीं आने ओ राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहे मत एक न मान्यो सिमरत शास्त्र वेद सब बहु भेद कहे हम एक न जान्यो श्री स्पान कृपा तुमरी कर मैं न कहयो सब तो

की फतेह। परम सत्कार योग गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जी, वड्डियां भागां वाले हो, गरीब निवाज शहनशाह सच्चे पातशाह, धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जीयां दी पावन पवित्र गोद विच बैठ के सज के गुरबाणी पढ़ सुन के लाही प्राप्त कर रहे हो, धनवादी हाँ ती सत्कार योग ज्ञानी प्रगट सिंह जी मोगे वालियां दे, जो आप जी नूं पावन लड़ीवार गुरबाणी की कथा विचार नाल निहाल कर रहे सन। आओ अगले समय वास्ते बेनती करा भाई बलजीत सिंह जी श्री अमृतसर साहिब वाले आप संगतां नूं गुरबाणी कीर्तन सरवण करवाउणगे। जून 1984 दे इह दिहाड़े चल रहे हन, सो आप संगतां दे चरणां विच बेनती है उन्हां शहीदां दी याद दे अंदर नितनेम तो वखरियां कुछ बाणियां दे श्री जपजी साहिब जी दे पाठ करके अरदास करिए। सतगुरु सच्चे पातशाह कृपा करन तिन्हां दे पाए हुए पूर्णियां ते चलण दा सानू सभना नू बल उद्दम उपराला प्रदान होवे, खालसाई राज भाग दी प्राप्ति होवे, बंदी सिंघां दीआं रहाईआं होण। सतगुरु सच्चे पातशाह कृपा करन पंथ नू इकत्रताईआं बख्शिश करन। आउण वाली 7 जून दिन ऐतवार नू गुरु घर विखे सवेरे 9:20 ते 84 दे शहीदां दी याद अंदर 9:20 ते श्री सहज पाठ साहिब जी दे भोग पाए जाणगे। सुआब संगतां ने ऐतवार 7 जून वाले दिन भी वध चढ़ के हाजरियां भरनियां, तिन्हां शहीदां नू प्रणाम करनी अते अपने भविख आउण वालियां जनरेशन नू बच्चियां नू भी उस लासानी इतिहास तो जाणू करवाउणा। होईआं सरबत फुल्लां दी खिमा, आओ गुरबाणी कीर्तन नाल जुड़िए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

जैसे निर्मल दर्पण मैना चित्र कछ, सकल चरित्र चित्र देखत दिखावई। कहिंदे जिवें साफ सुथरे शीशे विच कोई भी अपना पहला चित्र नहीं हुंदा, पर जिस तरह की कोई शकल लैके शीशे दे मूहरे

0: गोडा रख ना देवे डर दी उठदी बैठी ते गोडा रख ना देवे डर दी उठदी बैठी
1: हो ते गोडा रख ना देवे।

गैर गंभीरा गुनी गहीरा कोई ना जाने तेरा किता केवट चीरा रहाओ सब सुरती मेला सुरत कमाई सब कीमत मेला कीमत पाई ज्ञानी ध्यानी गुर गुरहाई कह ना जाई तेरी तिल वडियाई सब सत सब तप सब चंगियाईया सिद्धा पुरखा किया वडियाईया तुद बिन सदीक ने ना पाईया करम लै नाई ठाकर हाईया आखन वाला क्या विचारा सीती भरे तेरे भंडारा जिस तू देहे तिसे क्या चारा नानक सच सवारन हारा आसा महला आखा जीवा विसर मर जाओ आखन योका साचा नाओ साचे दाम की लागे भूखा उत भुख है खाए चली है दुखा सुख विसर मेरी माए साचा साहेब साचे नाय रहा साचे नाम की तिल वडियाई आ थके कीमत नहीं पाई जिस मिलकर आखन पाए वड़ा न होवै घाट ना जाए ना ओह मरै ना होवै सोगा देदा लह ना चुकै भोगा गुण एहो हो नाही कोए ना को हुआ ना को हो जे वड़ियाव ते वड़ तेरी दात जिंदन करके कीती रात कसम सारे तेगम जाता

हरती आवह है, हरती आवह है तो जी से जनजुग में सुखवासी से मुक्त पै जिन हर त्या जी तिन तोटी चमकी फासी जिन निरभौ जिन हर निरभौ त्याया जी तिनका भौ सब गवासी जिन सेविया मेरा हर जी ते हर हर रूप समासी से धन जिन हर त्याया जी जन नानक तिन बल जासी तेरी भगत भंडार जी परे बेअंत बेअंता तेरे भगत सलाह तो जी हर अनक अनेक अनंता तेरी अनक करे हर पूजा जी तप तप है जपै बेअंता तेरी अनेक पढ़ै बहु सिमर साधी कर क्रिया खट कर्म करंता से भगत भले जन नानक जी जो पाव है मेरी हर भगवंता तू आदि पुरख अंबर पुर करता जी तुत जे वड़िया ना कोई तू जो जो एको सदा सदा तू एको जी तू निश्चल करता सोई तुदी आपे भावे सोई वरतै जी तू आपे करें सो होई

जो सबसे कहा जा नोई आसा महला चौथा तू करता सचिहार बैडा साही जो तू पावे सोई तिसी जो तू देह सोई हूं पाई रहा सब तेरी तो सबनी त्याया जिसनु कृपा कर है तिन नाम रतन पाया गुरमुख लादा बलम गुवाया तुद आप विछोड़िया आप मिलाया तू दरियाओ सब तुझी माहे

अपना जान करो प्रतिपारा हमरे दुष्सवै तू का वह आप हाव दै मोहि बचाव सुखी बसे मोरो परवारा सेवक सिख सबै करतारा मोर चालिज करदा करिया सब बैरन को आज संगरिया पूर्ण होई हमारी आशा तोर भजन

सेवक सिख हमारे तारी है, चंचल सतना मारे मारी है, आप हाथ दे मुजबरिया, आप हाथ दे मुजबरिया, मन का त्रास निवरिया, हुजो सदा मारे पच्चा, श्री आस तो जू करियो रचा, राख लिह मोय राखन हारे, साहिब संत साहे प्यारे, दीन बंद दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतुर्दस कंता, काल पाए ब्रह्मा बपतरा, काल पाए शिवजु अवतरा, काल पाए कर विष्णु प्रकाशा, सगल काल का किया तमाशा, जमन काल जोगी शिव किया, वेद राज ब्रह्मा जूतिया, जमन काल सा लो सवारा, नमस्कार है ताहे हमारा, जमन का सब जत बनायो, देव दया जचन उपजायो, आदि अंत एक अवतारा, सोई गुरु समझियो हमारा, नमस्कार तिसी को मारी, सगल प्रजाजन आप सवारी, शिवकन को सबगुण सुग दिया, सतरन को पल मोहम्मद किया, काट काट के अंतर की जानता, पले बुरे की पी पहचानता, चिंटी ते कुंज रसूला, सब पर कृपा दिशकर भूला, संतान दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी, एक एक की पीर पहचाना, कट कट के पट पट की जाना, जब दुकरख करा करता रा, प्रजा तत्त तब देह अपारा, जब आकर करतो कब हो, तुम मैं मित दे सब हो, जेते बदन शिष्य तारा, आप अपनी बूझ उचारा, तुम सभी तेरे दंदरा लंबा, जानत भेद भेद अरे आलमा, धन का निर्भ का निर्लंबा, आद अनिल अनाद सांबा, ताका मूड उचारत भेदा, जाको पेव न पावत बेदा, ताको कर बहन अनुमानता, मां मूड़ा कछ भेद न जानता, मां देखो कै सदा सेवा, निरंकार का चिंत न पेवा, आप अपनी बुद्ध है जेती, वर्णत भिन्न भिन्न तोय तेती, तुमरा लखन जाए पसारा, केह बिद सजा प्रथम संसारा, एक रूप अनुसूपा, रंग पयो राव के पूपा, अंडज जेरज सेतज कीनी, उत्पज खान बौ रचदीनी, कहूं फू राजा हुए बैठा, कहूं सिमट पयो शंकर इकट्ठा,
ਸਿਗਰੀ ਸਿਸ਼ਟ ਦਿਖਾਏ ਅਚੰਪਵਾ ਆਦਿ ਜੁਗਾ ਸਰੂਸਿਅਮ ਪਵਾ ਅਭਰੱਚਾ ਮੇਰੀ ਤੁਮ ਕਰੋ ਸਿੱਖ ਉਬਾਰ ਐਸਿਖਾ ਸੰਗਰਾ ਦੁਸ਼ਟ ਜਿਤੇ ਉਠਤ ਉਤਪਾਤਾ ਸਗਲ ਮਨੀਸ਼ ਕਰੋ ਰਨਕਾਤਾ ਜੀ ਅਸ ਧੋਤ ਸੰਨੀ ਪਰੇ ਤਿਨਕੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੁਖਤ ਹਵੇ ਮਰੇ ਪੁਰਖ ਜਨ ਪਗ ਪਰੇ ਤਿਆਰੇ ਤਿਨਕੇ ਤੁਮ ਸੰਕਟ ਸਵਟਾਰੇ ਜੋ ਕਲ ਕੋ ਇੱਕ ਬਾਤ ਧਿਆਏ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਾਲ ਨਿਕਟਨੇ ਐ ਹੈ ਰਚਾ ਹੋਏ ਤਾਏ ਸਭ ਕਾਲਾ ਦੁਸ਼ਟ ਅਰਿਸ਼ਟਰੇ ਤੁਤਕਾਲਾ

दुष्ट शास सके न कोई, एक बार जिन तुम्हें संभारा, काल पाते तही उबारा, चिन्नर नाम त्यारो का, दर्द दुष्ट दोते रा, खड़ग केता मैं शरण तिहारी, आब हाथ दै लिउ उबारी, सर्व ठौर मोह साई।

सिमरत सातल भेद सब बहु भेद कहे हम एक ना जानियो। श्री असपान कृपा तुमरी करा।

आनंद सुनो वडभागी हो, सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म पर पाया, उतरे सगल विसूरे दुख रो संताप उतरे, सुनी सच्ची बाणी संत साजन पै सरसे, पूरे गुरते जानी सुनते पुनीत कहते पवेता, सदगुरिया पर पूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे, वाजी अनह तूरे

पंथ की जीत, श्री साहिब जी सहाय, खालसा जी के बोलबाले, बोलो जी, बोलो जी।